0: Daksangi jarangi tatpanang jindigrim sanazat, nga je Akashwani leni jindig tangin. Sngato chuto gyat chadu kasata Akashwani Dilli ne samacha prabhat tang morning news sanazat.
1: Lovely nigga. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
4: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक है। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजाशेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणि हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 480 चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माही और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
9: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। इंडिया एंड द नेदरलैंड्स एलिवेट देयर थाइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉलोइंग टॉक्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज डच काउंटर पार्ट रॉब येटन। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू रीच गोथेनबर्ग टुडे ऑन अ टू डे विजिट टू स्वीडन to hold talks with his Swedish counterpart, Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to the level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. During the talks, the two leaders reviewed cooperation across sectors, including trade, defense, technology, water management, clean energy, healthcare, and education. Several agreements were also signed to deepen collaboration in priority areas. Announcing the elevation of ties to a strategic partnership, Prime Minister Modi said, "India-Netherlands ties had witnessed significant progress over the last decade," and described the Netherlands as one of India's key European partners.
11: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नीदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर।
10: Highlighting cooperation in sectors such as water management, healthcare and education, Mr. Modi said, democratic values, market economy and responsible behavior are part of our common approach. Calling for greater collaboration in emerging sectors, Prime Minister Modi said, India and the Netherlands should combine Dutch expertise with India's speed and skill to expand cooperation in innovation, sustainability, investment and defense.
11: भारत और नीदरलैंड के बीच मजबूत हो रही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे बिजनेस रिलेशंस को नई प्रेरणा दे रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप भारत में अपना स्कोप, इन्वेस्टमेंट और एम्बिशन बढ़ाएंगे और आपके साथ पूरे यूरोप का इनोवेशन इकोसिस्टम भी भारत आएगा। आपका देश सदियों से नए अवसरों की खोज में आगे बढ़ता रहा। मैं आपको आश्वासन देता हूं, भारत में आपकी ये खोज सफल होगी और सार्थक भी। अब आपको भारत में और बोल्डली वेंचर करना है।
10: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल रीच गोथेनबर्ग टुडे ऑन अ टू डे विजिट टू स्वीडन, मार्किंग अ हिस्टोरिक माइलस्टोन इन द डीपनिंग अलायंस बिटवीन न्यू दिल्ली एंड स्टॉकहोम। मिस्टर मोदी विल होल्ड बायलैटरल टॉक्स विद हिज स्वीडिश काउंटर पार्ट उल्फ क्रिस्टर्सन to review the entire gamut of bilateral relations and explore new avenues of cooperation to enhance bilateral trade as well as collaboration in green transition, AI, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action and people-to-people ties. The two prime ministers will also address the European Roundtable for Industry, a leading pan-European business leaders forum, along with President of the European Commission, Ursula von der Leyen. This engagement represents the third leg of the Prime Minister's broader European tour and his first visit to the continent since the landmark India-European Union Free Trade Agreement, FTA, took effect in January 2026. The visit follows a high-growth trajectory in economic engagement, with bilateral trade reaching a record $7.75 billion in 2025, and Swedish FDI into India totaling $2.8 billion between 2000 and 2025. More from our correspondent.
3: Sweden, one of the world's most innovative economies, finds a natural synergy with India's digital talent pool. Currently, over 280 Swedish companies operate in India, while 75 Indian firms have established themselves in Sweden. A unique highlight of the visit is the joint address by the Prime Minister to the European Roundtable for Industry alongside the European Commission President. Defence and security cooperations have evolved into a central pillar moving towards industrial integration. This relationship is anchored in a 2009 Defence Cooperative Agreement and 2019 General Security Agreement. Industrial trust is exemplified by Swedish major establishing a fully owned production facility in Haryana under Make in India. It may be noted that such investment drive local employment and capacity building. Collaboration in artificial intelligence and emerging technologies provide the bedrock of this partnership. Future cooperation prioritizes AI, digital and the Internet of Things. Furthermore, the two nations are collaborating on space exploration, with the Swedish Institute of Space Physics providing instruments for ISRO's Venus Orbiter mission. The green energy transition is central to the bilateral agenda. A standout success is the LEED IT initiative launched in 2019 to guide the heavy industries towards a low-carbon economy. It may be noted that at COP28, the two prime ministers launched LEED IT 2.0, emphasizing technology transfer and the industry transition platform to mobilize technical support. Sakshi Singh, Akashwani News, Gothenburg, Sweden.
10: India and Sweden share a legacy of trade and people-to-people ties spanning over a century, rooted in mutual respect, peaceful coexistence, and the principle of ahimsa. This deep-rooted bond is marked by historic milestones such as the centenary of Nobel laureate Rabindranath Tagore's 1926 visit to Sweden. Today, this relationship is evolving from its cultural foundation into a robust industrial and economic partnership. In a conversation with Akashwani, Indian Ambassador to Sweden Anurag Bhushan emphasizes that the Prime Minister's upcoming visit is set to further cement the ties between the two nations.
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense, but this relationship has now outgrown from a buyer-seller relationship to more of defense partners. And both countries, companies, each other, India and Sweden, they are looking to co-develop and co-produce equipment. They have been galvanized by Honorable Prime Minister's initiatives such as Atmanirbhar Bharat, Make in India, and also infrastructure development that has happened.
10: Within days of levying high customs duties on precious metals, the government has imposed import curbs on silver. The Directorate General of Foreign Trade in a notification said the import policy for silver, including silver plated with gold and platinum, are revised from free to restricted with immediate effects. The government on Wednesday had hiked import duty on precious metals from 6% to 15%. The goods under restricted category needs government license for imports. The Delhi government has taken a significant decision to reduce the value-added tax on aviation turbine fuel in the national capital from 25% to 7%. Delhi Chief Minister Rekha Gupta said that the decision has been taken in line with Prime Minister Narendra Modi's emphasis on strengthening connectivity and economic activity, with the objective of providing relief to the aviation sector, promoting tourism and logistics activities. The Chief Minister informed that the concessional rate will initially remain in force for a period of 6 months. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The Archaeological Survey of India, ASI, has granted the Hindus an unrestricted access to the monument at Bhotshala complex in Dhar district of Madhya Pradesh for worship and other purposes. The ASI's decision came a day after the Madhya Pradesh High Court ruled that Bhotshala in Dhar was a temple of goddess Saraswati. More from our correspondent.
8: Quoting the ASI's order, an official said that Bhojshala was a center of learning and research on Sanskrit language, grammar and literature besides being a temple. The official further said that the Hindu community shall have an unrestricted access to the complex in connection with the ancient practice of learning and worship of goddess Saraswati. Earlier on Friday, the Madhya Pradesh High Court declared that the Bhojshala complex in Dhar district is a temple dedicated to goddess Saraswati, and the center and ASI can decide on its administration and management. The High Court's Indore bench also quashed the April 7, 2003 order of the Archaeological Survey of India that allowed Muslims to offer namaz inside the Bhojshala complex every Friday. The bench, which was hearing the case, also said that Muslim community, which called the 11th century ASI protected monument Kamal Mola Mosque, may approach the state government for allotment of separate land in the district for construction of a mosque. Abhinav Goyal, Akashvani, Bhopal.
10: Central Bureau of Investigation has arrested another key accused from Pune in connection with the NEET paper leak case. The accused, Professor Manisha Mandhare, is a botany teacher at a college in Pune. According to the CBI, National Testing Agency had appointed her as an expert in the examination process. Earlier on 14th of May, another accused, Manisha Vaghmare, was also arrested from Pune. Both the accused were produced before a Pune court yesterday and later taken to Delhi for further investigation. The R.G. Carr Medical College rape and murder case will be heard by the division bench of Justice Shompa Shorkar and Justice Tirthankar Ghosh of the Calcutta High Court. Earlier this week, Justice Raj Shekhar Mantha and Justice Rai Chattopadhyay recused themselves from the case, citing heavy roster. Sanjay Roy, the lone convicted in this case, was sentenced to life imprisonment in January 2025. The India Meteorological Department, IMD, said that the southwest monsoon has advanced into some parts of Arabian Sea, Bay of Bengal, many parts of Andaman Sea and Andaman Islands, and entire Nicobar Islands. According to the IMD, southwest monsoon is likely to set in over Kerala on the 26th of this month. In badminton, Indian pair of Satvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty will face Indonesian duo Leo Roli Karnantko and Daniel Martin in the men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. This will be the Indian pair's first final of the season and their third final appearance at the tournament, having won the title in 2019 and 2024. Earlier, the Indian duo stormed into the men's doubles final after defeating Malaysia's Goh Si Fei and Nurizuddin in a thrilling semi-final clash by 19-21, 22-20, 21-16. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
12: Thank you, Sunil. Pune botany professor held for NEET leak was NTA's subject expert is the top headline in the Indian Express. She is the second member of the National Testing Agency's paper-setting committee who allegedly disclosed botany and zoology questions at coaching classes she conducted at her Pune residence, writes the Hindustan Times. The Asian Age reports that the Narcotics Control Bureau has seized the first ever consignment of Captagon, also known as jihadi drug, worth 182 crore rupees on way to the Middle East. In its editorial piece titled Plugging Leaks, the Statesman argues that

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बदलो बदलो, आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: Ibu, Akashwani Lane, Kastingishuran, Diskit Dolmani, Nasulgun Sananzad. Shilun Narendar Modi Tang Nidalende, Shilun Rodison Guniparla, Heng Nanga, Sungdos Zatestini, Gelkab Nishke Parla, Del Maas Tan Pochochiska, Lotun Shkudenok, Gelkab Nishke, Tsonglas, Shungskub, Zotaps, Chishitaps, Shukstangma, Kamsde Shabstostang, Yuntan Guninanga, Jorstelika, Shet Saltenok, Eringsla, Janan Karchan, Donsa Mangpojitang, Delte, Chatone, Ikchika, Chakstar Zatenok, Shedlone, Butkane los chutak chiginanga, gagartang nidelen de parla del gala yurte nok molenchik ezuk molajats.
1: Len ki expertise aur Bharat ki speed aur scale ko har kshetra mein jodna chahiye. Innovation, investment, sustainability aur defense jaise kshetron mein sahyog ko naye aayamon tak pahunchana hai. Isi saajha drishti ke saath Bharat Netherland sambandhon ko स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा
0: Delhi Times kun se ni de dishok se urguk se sanskun la piloga binkan tang delte galkan PV Kulkarni tang Manisha Wangmar kun CBI jagmar chupi zoom steno mixale CBI judge Ajay Gupta itoga mima manga gus zadin jiktang starcho judges la Gelsane Piloga Kerchese Jalta Saltenok, Stachodi Lasse Shulkani Nanga CBI Shatisla, Kulkani Subject Expert Chiginok, Yang Nistong Ishu Saruk Need Yuji Dirguk Chokantang Del Yotkanjik, CBI Shatisla, Kulkani Chemistry Lecturer Enok Kabo, Kon NTA Tsaps Joste Erguxe Nanga Delte Yotenok, Molte Salpo Jatenok. Central Board of Secondary Education CBSE Jindar Gupane Phala Skatik Sum Lob Goshes Khachan Choste Inok Ibo Talo Julail Dane Phala Gozuk Chocha Senok Jocha Jige Nanga Bode I Skatik Sume Nangne Nispo Gyagare Nanga Kolkan Skatik Yongo Smolte Inok Itoga Thakchatpo Gyagare Yontane Thapchus Nistong Nishu Nangjintang National Curriculum

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये पर्दा हटा दो,

दागसंगे जरंगे एक फूल दो माली फिल्मलू आशा भोसले तंग मोहम्मद रफी निस्काने सनजत्स कसता जुग गया आसमा फिल्मलू लता मंगेशकर ने संचसला फुलिन लू सोमकन हसरत जयपुरी यंग लू यंग श्रेकन शंकर जयकिशन।

0: 17 मई इतवार और जेके बैंक के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी का ताजा शुमारा लेकर हम हाजिर।
1: प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन।
0: आज के शुमारे में भी शामिल होंगे कई सारे मौजूदात, लेकिन शुरुआत हज़्म मामूल इदारिया से।
1: जम्मू कश्मीर बैंक, हर फर्द की हर जरूरत का बैंक। आपकी ख्वाहिशों, उम्मीदों, उमंगों, जज्बात, एहसासात और तवक्कुआत का बैंक, जहां पैसे को नहीं बल्कि रिश्तों को अहमियत की निगाह से देखा जाता है, जहां खिदमत को फरीजा समझकर आम लोगों के लिए राहत, सुकून, आराम, खुशहाली और तरक्की के सामान फराहम किए जाते हैं। हमारा मिशन नकदी लेन देन से परे आपकी परेशानियों का अजाला और मसाइल के हल में मुजमिर है। नकदी लेन देन के लिए बदलते वक्त में पैसे की जगह डिजिटल सॉल्यूशंस ने ली है, जिससे पैसे की चोरी के खदशात खत्म करने में आपके बैंक ने आपकी रहनुमाई की। लेकिन बात यहाँ पर आकर खत्म नहीं हो जाती है। हमारे घरों में हमारी माओ बहनों का सोना और जायदाद मौजूद होता है, जिससे हमेशा ये खतरा लाहक होता है कि किसी की बुरी निगाह इस पे ना पड़े और मौका पाते ही वो चोरी या डाका डालकर हमें गमों के अंधेरे में ना धकेल दे। अगर हमारी कोई कीमती चीज खो भी जाए तो उतना दुख नहीं होता जितना चोरी हो जाने पर होता है। आप लाखों करोड़ों का कीमती सामान, जरूरी कागजात और जेवरात वगैरह कैसे घर में महफूज समझते हैं? हमारी एक पल की बेहसी एक साल की चौकसी को पल में हमारी बेबसी बना सकती है। खतरा मोल न लें, इत्मीनान और सुकून से अपनी जिंदगी को बरतें। जेके बैंक से राबता करें। हमारे सेफ डिपॉजिट लॉकर्स अक्सर ब्रांचेस में मौजूद हैं। अपनी नजदीकी ब्रांच जाकर लॉकर के बारे में जानकारी हासिल करें। अपना कीमती सामान हमारे महफूज लॉकर्स में रखकर मामूली रकम के इवज बेफिक्र हो जाएं। घूमने जाना हो, दावत पर जाना हो या अपने रोजगार की खातिर नौकरी या कारोबार के लिए घर से बाहर हो तो सुकून से जाएं। हम आपकी खुशियों को बेखलल बनाने के लिए आपकी फिक्र और अंदेशों के खरीदार हैं। आए इस सहूलियत का फायदा उठाएं, चिंता मुक्त और निश्चिंत हो जाएं।
0: दोस्तों, अपने ब्रांच और एटीएम नेटवर्क के फैलाव पर कारबंद जम्मू कश्मीर बैंक ने गुज़श्ता दिनों राजौरी और नई दिल्ली में दो अहम मकामात पर नए एटीएम नस्ब किए, जिनसे बैंक के एटीएम्स की मजमूई तादाद 1443 तक पहुंच गई है। राजौरी में रक्की बांध के मकाम पर नस्ब नए एटीएम को जोनल हेड राजौरी राजीव डिगरा ने मौजूद शहरियों की मौजूदगी में इनॉग्रेट किया, जो कि एक अहम देरीना अवामी मांग थी। इस मौके पर बोलते हुए जोनल हेड मौसूफ ने कहा कि बैंक एक मजबूत हिकमत अमली के तहत दूर उफ्तादा और दुश्वार गुजार इलाकों में बैंकिंग सहूलियात पहुँचाने के लिए वादाबंद है, ताकि अवामी सहूलियात और आसान बैंकिंग हर शहरी को उसकी नजदीक तरीन जगह पर मयसर कराई जा सके। उन्होंने कहा कि इस नए एटीएम की बदौलत रक्की बांध के लोगों को 2400 घंटे बेसिक बैंकिंग सहूलियात मैसर होंगी, जिसे अवामी हलकों ने काफी सराहा है। वाजह रहे कि राजौरी जोन में ये बैंक का 86वां एटीएम है। राजौरी के दुश्वार गुजार इलाके के साथ साथ बैंक ने कौमी राजधानी नई दिल्ली के एक अहम मशहूर मारूफ अस्पताल आईएलबीएस के अंदर भी एक एटीएम नस्ब करके इसे अवाम के लिए खोल दिया।

0: करार दिया और उम्मीद जाहिर की कि आने वाले दिनों में बैंक अहम तिजारती और शहरी इलाकों में अपनी प्रेजेंस को मजीद फाल बनाएगा और ये कि रेस्ट ऑफ इंडिया में बैंक के रुतबे को मजीद तकवीत मिलेगी।
1: एक जरूरी इतला, अगर आप सरकार की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमों में से किसी भी स्कीम से फायदा हासिल कर रहे हैं जिसका मुआवजा आपके बैंक अकाउंट में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बदौलत आता है, तो आज ही अपने नजदीकी जम्मू कश्मीर बैंक की शाख या फिर नजदीकी खिदमत सेंटर पे जाके अपना आधार कार्ड लेके पहुँचे और अपने अकाउंट को आधार से लिंक करवाए।
2: दोस्तों, टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन ने दुनिया को बिल्कुल बदल कर रख दिया है और बैंकिंग का शोबा इस तब्दीली में पेश है। रिवायती बैंकिंग के तरीके अब बड़ी तेजी से डिजिटाइज हो रहे हैं और सार्फीन भी अब ब्रांच विजिट्स के बजाय मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल करके अपनी बैंकिंग एक्सपीरियंसेस को आसान बनाने के साथ साथ अपना वक्त भी बचाते हैं जो दूसरे अहम कामों में सर्व किया जा सकता है। लेकिन जहां इस बदलाव से हमारे लिए आसानियां पैदा हुई हैं, वहीं हम पर इजाफी जिम्मेदारियां भी आन पड़ी हैं। हालांकि बैंकिंग के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का आला तरीन निजाम राइज है और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इनक्रिप्टेड ट्रांजैक्शंस और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए इस निजाम को काफी मजबूत बनाया जाता है। ताहम चंद गुजारिशात पर अमल करके हम इस अमल को मजीद महफूज बना सकते हैं। हम बारहा गुजारिश करते हैं कि अपना पासवर्ड, OTP, पिन या CVV किसी के साथ शेयर ना करें, वो चाहे अपना हो या पराया। कोई भी बैंक फोन करके आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगता। अगर आपको भी कभी ऐसी कॉल मौसूल हो तो इसे जल्द रिपोर्ट करें। अपने पासवर्ड जरा हटकर सेट करें और इनमें अल्फान्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करें। अपना DOB, फोन नंबर, अपने प्यारे का नाम वगैरह पासवर्ड में इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो आसानी से गैस किया जा सकता है। डिजिटल बैंकिंग निहायत ही आसान, तेज और महफूज बैंकिंग का तरीका है, लेकिन इसका एक अहम असूल है, वो ये कि अपने अलावा किसी पर भरोसा ना करें, क्योंकि हमारे पास आदाद शुमार मौजूद है उन वाकयात का जहां घर के बच्चों, दोस्तों, मुलाजमीन या आपके जानकारों ने ही आपके साथ फ्रॉड करके अकाउंट का गलत इस्तेमाल किया है। एक और गलती जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए वो ये है कि ATM या क्रेडिट कार्ड के पीछे अपना पिन नंबर लिखना। ये ऐसी ही बात है कि आप पेट्रोल और माचिस एक साथ रखते हैं जिससे कभी भी आग लगने का खतरा रहता है। J&K बैंक का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी निजाम मुल्क के बेहतरीन बैंक्स में शुमार किया जाता है और ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि बैंक के सिक्योरिटी लैप्स की वजह से गाहक का नुकसान हुआ हो। इसीलिए हम बारहा गुजारिश करते हैं कि जानकार बनिए और अपनी बैंकिंग एक्सपीरियंस को हमारे फुल प्रूफ सिक्योरिटी निजाम की बदौलत आसान और महफूज बनाए। J&K बैंक के बेशतर बैंकिंग प्रोसेसेस अब मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज हो चुके हैं, लिहाजा हमारी इन सुविधाओं का लाभ उठाएं और अपने बैंक की हर सलाह पर अमल करके नुकसान से बचिए। हमारा मकसद आपके पैसे को महफूज बनाना है जो आप बड़ी मेहनत से कमाते हैं। हमें इसकी फिक्र भी है और कद्र भी।
0: दोस्तों, कार आजकल की दुनिया में एक जरूरत बन चुकी है और आए दिन कार बनाने वाली कंपनियां नई गाड़ियां बाजार में लाती हैं और बैंक्स अपने ग्राहकों के लिए कार लोन प्रोडक्ट्स ऑफर करके इस खरीदारी को काबिले हुसूल बनाते हैं। लेकिन जब बात जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रहने वाले आम लोगों की हो तो उनके लिए बैंकिंग मतलब JK बैंक और कार लोन मतलब J&K बैंक कार लोन, जो बहुत ही किफायती इंटरेस्ट रेट्स पर बैंक अपने कस्टमर्स को ऑफर कर रहा है। तभी तो यहाँ के कार लोन मार्केट में JK बैंक के कार लोन को ग्राहकों की पहली पसंद कहा जाता है। यही नहीं, बैंक तमाम कार डीलर्स के साथ भी वक्तन फोक्तन रابطے में रहता है ताकि आपसी सलाह मशवरे से प्रोडक्ट्स में बदलाव लाया जा सके और ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स दिलाए जा सके। इस हवाले से कश्मीर के कार डीलर्स के साथ बैंक की आला कयादत की एक मीटिंग गुज़श्ता दिनों बैंक के कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत बैंक के जनरल मैनेजर रिटेल एडवांसेज राकेश मगोत्रा ने की और जिसमें मारुति सुजुकी, हिंडई, महिंद्रा, होंडा, टोयोटा, किया, MG, रेनॉल्ट, वोक्सवागन, टाटा और स्कोडा जैसी नामी ग्रामी कार मैन्युफैक्चरर्स के कश्मीर डीलर्स ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में ग्राहकों के मुख्तलिफ मसाइल और हैसल फ्री लोन के हवाले से मुश्तरका इकदाम पर गौरखोज किया।

0: गया। जेके बैंक का कार लोन जो महज 7.70% इंटरेस्ट रेट से शुरू होकर 84 आसान किस्तों में वाजिबुल अदा होता है के हवाले से कार डीलर्स ने इत्मीनान का इजहार किया। जनरल मैनेजर राकेश मगोत्रा ने इस मौके पर बाहमी इश्तराक की मजबूती के हवाले से मजीद अहम इकदाम का ऐलान किया, जिनसे आम ग्राहकों के लिए कार लेना बहुत ही आसान बन जाएगा, जबकि कार डीलर्स ने बैंक के मुसलसल साथ और हैंड होल्डिंग के लिए मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा किया।
1: एक जरूरी इतला, जम्मू कश्मीर बैंक के उन बुजुर्ग माजूर और बीमार ग्राहकों से गुजारिश की जाती है जो किसी वजह से जम्मू कश्मीर बैंक की शाखों पर नहीं आ सकते हैं कि वो जेके बैंक की डोर स्टेप बैंकिंग से फायदा उठाएं, जहां बैंक के नुमाइंदे उनके घर आकर मुख्तलिफ बैंकिंग सहूलियात जैसे KYC डॉक्यूमेंट्स वसूल करना, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना, कैश डिपॉजिट करना या अपने अकाउंट से कैश निकालने जैसी सहूलियात वगैरह शामिल हैं, नॉमिनल चार्जेस के एवज आपको घर बैठे मुयस्सर होंगी। लिहाजा आज ही अपनी बैंक शाखा से राबता करें और इन सहूलियात से फायदा उठाएं।
2: सामीन, आज के शुमारे में हम नॉमिनेशन फैसिलिटी के अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बैंक में डिपॉजिट अकाउंट खोलते वक्त आप एक फॉर्म भरते हैं जिसमें बाकी डिटेल्स के साथ साथ नॉमिनेशन कॉलम भी होता है। अक्सर अवकात देखने में आया है कि डिपॉजिटर्स ये अहम कॉलम गैर जरूरी समझकर खाली छोड़ देते हैं।
3: चूंकि मौत पर किसी की दस्तरस नहीं है, देखने में आया है कि डिपॉजिटर्स की खुदा न खास्ता मौत होने पर नॉमिनेशन डिटेल्स का फॉर्म में दर्ज ना होना वारिसों के लिए काफी मुश्किलात का सबब बन जाता है।
2: इसलिए याद रहे कि नॉमिनेशन फैसिलिटी या नामजदगी की सहूलत मरने वाले डिपॉजिटर्स के क्लेम्स को सेटल करने के तरीकेकार को आसान बनाती है। नॉमिनेशन फैसिलिटी से बैंक को फोत शुदा शख्स के अकाउंट में जमा बकाया रकम की अदायगी के लिए वैलिड डिस्चार्ज मिल जाता है, जिससे नॉमिनी के अकाउंट में बिना किसी दिक्कत या देरी से रकम जमा की जा सकती है।
3: वाजे रहे, नॉमिनेशन फैसिलिटी बैंक लॉकर्स के लिए भी दस्तियाब है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमेशा नॉमिनेशन डिटेल्स अपने डिपॉजिट अकाउंट्स या लॉकर्स में फराहम करें।
4: दोस्तों, एक अंग्रेजी कहावत है, लेबर समथिंग फॉर अ रेनी डे, यानी आने वाले वक्त के लिए कुछ बचाना जरूर चाहिए। इंसान की जिंदगी जिस कदर बेहतर और खूबसूरत है, उसी कदर इसकी बेसबाती और वक्त के चाल चलन का अंदाजा लगाना मुश्किल है। वक्त कब कौन सी करवट बदले कोई नहीं बता सकता, इसीलिए तो हम समझते हैं कि ऐसे वक्त का सामना करने के लिए थोड़ी थोड़ी तैयारियां अभी से करनी चाहिए, वो वक्त जो एक आजमाइश की सूरत या एक मौका लेकर हमारे सामने खड़ा हो जाए। बचत की आदत एक आदमी को आने वाले अच्छे और बुरे वक्त में सहारा देती है। वक्त बुरा हो तो उससे निकलने में मदद मिलती है और अच्छा हो तो उसकी खुशियों को दुबाला करने में माउन साबित होती है। हर दिन, हर हफ्ते या हर महीने अगर हम थोड़ा थोड़ा पैसा अपने सेविंग्स अकाउंट में या रेकरिंग अकाउंट में या किसी दूसरी स्कीमों में इन्वेस्ट करें तो वो पैसा ना सिर्फ महफूज रहेगा बल्कि जमा होकर एक बड़ी रकम भी बनेगा और उस पर इजाफी 4 पैसे बैंक भी अदा करेगा। जब भी आपको जरूरत महसूस हो तो आसानी से आप ये पैसा हासिल कर सकते हैं। वक्त के तकाजे पूछकर नहीं आते। घर के किसी फर्द की खुदा नख्वास्ता बीमारी, बच्चे का एडमिशन, शादी ब्याह, नई गाड़ी, नई जमीन या किसी दूसरे खैर शर में आपको पैसे की जरूरत हो तो ये बचत आपके काम आएगी। जेके बैंक के एमपेज लाइफ प्लस से आप निहायत ही मामूली रकम का भी FD बना सकते हैं जो वक्त जरूरत आपके काम आएगा। लिहाजा समझदारी और दूरअंदेशी का मुजाहरा कीजिए और आज ही से बचत करना शुरू कीजिए।
1: और अब इनामी सवाल की बारी।
0: दोस्तों, पिछले हफ्ते के शुमारे में हमने आपसे J&K बैंक के माली साल 2025-26 की नेट प्रॉफिट फिगर पूछी थी।
1: इस सवाल का सही जवाब है 2363 करोड़।
0: दोस्तों, इस हवाले से हमें कई सारे जवाब ईमेल के जरिए मौसूल हुए, जिनमें दिए गए बेशतर जवाब सही थे, लेकिन लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए आज के हमारे 3 विनर्स हैं।
1: कश्मीर डिवीजन से शालबू गांदरबल के जान मोहम्मद खांडे, जम्मू डिवीजन से मुगल मैदान किश्तवाड़ के संदीप ठाकुर और लद्दाख से जानसकार के फुनसुक स्तोबदन।
0: इनाम जीतने वाले तीनों दोस्तों को हमारी तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक।
1: और अब नोट करें आज का इनामी सवाल।
0: दोस्तों, आपको बताना होगा कि हालिया दिनों 2 नए ATMs इनॉग्रेट करने के बाद J&K बैंक के ATMs की मजमूई तादाद कितनी हो गई है।
1: आपके जवाब हमें 23 मई
0: शनिचरवार शाम 5 बजे तक हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी jkbankdiary@jkbmail.com पर पहुंच जाने चाहिए। वजह रहे कि आपके मेल में आपका नाम, पता, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर जरूर लिखा हो। तो लेते हैं आपसे रुख्सत अगली इतवार तक, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए। और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1-800-890-2122 या विजिट करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.jkb.bank.in।
5: पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट J&K बैंक
4: रेडियो जम्मू एंड कश्मीर बैंक के चिंदाजत करने डिग्रेम J&K बैंक डायरी सनजात माजे आकाशवाणी लेनी चुनजिकता स्नातो छुचो छुछादुक कसता ठुगुनी डिग्रिम ठुगी स्कित्सल संचेसला फुलिन डिग्रिमे नांगा सुंगोला लोपठुगुनी ख्यों आजातकानी डिग्रिम स्नाचोशिक सानाजादिन दिरिंगे डिग्रिमे नांगा लोपठुक खाकलेन कानगुन स्तानजिन नामसल कुंजुं स्तानजिन जिगमेत लोसल स्तानजिन नोरगेल स्तानजिन नामसल स्तानजिन नोडुन स्तानजिन छोजदर स्तानजिन दाशिल स्तानजिन ईशे स्तानजिन नोरियांग तंग स्तानजिन कुंजेस नांगसल यांग टेस्टिंग ने साइड इफेक्ट ऑफ स्क्रीनिंग का स्तानजन गुटुप ने तमडेल जेक सनाजादिन डिग्रीम फुलकन स्तानजन गुटुप यांग डिग्री में गोडिक जतकन सेरिंग छोरोल

0: tugjecherik dinangmo nyiri jabre lumal demo sanadat tugjeche inna guntang yampo pelop da khan chosne dini jigrim thon ngaja revalak ni jamal demo chorte do stingmayam tigrim jikhudi jalin tete chukpa ngaja gonspa sanadat jule
1: ya thugun inna tang yampo tene tusso dang changdo tene stingma zangima tene yang jigrim somaj gurte jalin te chupa gonspa sanadat ya jule thugun
2: jukare
1: ya jule thugun
3: Daksangi jarangi tu ne digrim tugi iskit sal sanazats. Diring a digrim enanga loptuk kak lenkan gun en pen stanzin namsal kunjung, stanzin jigmet losal, stanzin norgel, stanzin namsal, stanzin nodun, stanzin chosdar, stanzin dasil, stanzin ishe, stanzin noryangtang, stanzin kunzes nangsal. Digrim pulkan en pen stanzin ngotup yang digrim a godik zatkan sering churol. Maji akashwani lene juinjik tangin, snato chuzo, chutang skarma sumchu sokshik chaduk. Kasatang ime chuzo chugnis thukpa FM Gold dali digrim gun sanazat.
4: Aur tamam tarah ke design ye banane ki kya zarurat hai? Bhai un sab se guzarte hue phir hame aapka naam padhna padta hai, dhoondna padta hai. Aur isme hota kya hai phir? Time, samay, aadhe ghante ka to program hai. Usme aapke naam bhi padhne, gaane bhi sunne hai, bahut sare kaam karne hai na? Kuch madad kijiye hamari. Apne naam ek hi baar bhej dijiye, bas ho gaya. एक भाई साहब के तो 10 मैसेजेस आ चुके हैं. खैर साहब, हम आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर दिल का मेलबॉक्स खोलकर बैठे हैं आपकी फरमाइशों का प्रोग्राम. और फरमाइशों का प्रोग्राम है तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने फरमाइशें की हैं उनके नाम पढ़ देना जरूरी है. फिर उन्हीं में से किसी एक का गाना हम चला देंगे और बजेंगे वो गाने जो सुनेंगे आप भी और हम भी. मालियान सरदना मेरठ से, अनिल जैन, संयम मुस्कान, मास्टर जीव्यम, भाई दिग्दर्शन जी, भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से, कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी, ये राजेश कुमार साहब हैं, मोहन गार्डन दिल्ली से, मुंबई से अनु बरजात्या, शमसुल खान और अनुराज बेनारा, शीना नायर मैंगलोर कर्नाटका से संदेशा भेजती हैं. इन सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया. बाकी नाम बाद में पढ़ेंगे, गाना सुनने की बहुत जल्दी हो रही है.

देखिए साहब, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, रितु, मुकेश, जगताप, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु, सागर और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा माही, ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू, देवेंद्र अरोड़ा साहब देहरादून से, और ये एक संदेशा हिमानी शर्मा का आया है सहारनपुर से। वाह, सहारनपुर से हिमानी शर्मा का संदेशा आया है। उन्होंने एक बहुत ही प्यारे गीत की फरमाइश की।

और कहा है कि ये गीत मैं अपने हस्बैंड को डेडिकेट करना चाहती हूँ। कमाल है साहब, आप सीधा उन्हें फोन करके बता दो ना। मजे की बात यह है कि वंदना चौहान का ये संदेशा भी इसी गीत के लिए आया है दिल्ली से। तो आइए ये गाना सुनते, बहुत ही प्यारा गीत आपके लिए आ रहा है।

0: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह पल्लवी प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विन मंगलाबेन राजेंद्र वेद प्रकाश मोदी नगर गाजियाबाद से मारहड़ा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी शहनाज नवेद हसन सुहेल रशीद वारसी अनम यशफ उत्तम नगर वेस्ट से जयराम खोरवाल सचिन अमन दीपांशु कस्बा गन्नौर उत्तर प्रदेश से फारूक अली खान फैजी फराज फरहीन फरहान फारिया ताहिरा और कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा सिटी दीवाना नवाब अहमद भारती शबाना भारती अरहान अहमद सूफिया नवाब बल्लीमारान से पंकज मोहोड़ अमरावती महाराष्ट्र से और चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा विमला अनेजा बठिंडा रोड मंडी डब्वाली से मणि डब्वाली से राजेंद्र नारंग अंजू मोहित तानिया भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा कपिल ईशान पूजा परिहार गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डोडी और प्रमोद कुमार पुष्पेंद्र कुमार सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और उनके साथ चंद्रकला गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार डैडी और मनीष रामदेवरा से दिनेश चौहान डांगरी से बाबूराम जयपाल खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजरनिया देवेंद्र राजपाल अभिषेक योगेश पूजा आरजू नव्या बिजरनिया और सुदर्शन मुखी अनीता और सिमरन शांति नगर सोनीपत जज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया आपके नाम पढ़ूं रीटा भाटिया जी भी साथ हैं और गाना सुनवाऊं दोनों में फंस गए हैं अपन लेकिन नहीं भाई साहब हम तो गाना सुनेंगे आप भी सुनिए रानी की दिल्ली से ये फरमाइश है।

दोस्तों, आपके मैसेजेस आते हैं, आपके संदेशे आते हैं, फरमाइशें आती हैं, दिल भीग भीग जाता है। जी तो चाहता है आपकी हर फरमाइश हम पूरी करें, लेकिन क्या करें, समय की पाबंदियां होती हैं। और दूसरी बात यह कि आप बार बार एक ही कार्यक्रम में बार बार अगर मैसेज भेजेंगे तो हमारे बाकी भाई बहनों का क्या होगा, उनकी भी हमें नाम पढ़ने का दिल करता है, आपको भी अच्छा लगता है कि आपका नाम सुने आप, तो आप के भाई बहनों को भी अच्छा लगेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखें। और वो सरनेम हर नाम के साथ साथ लगाएं। आप एक साथ अगर 10 नाम लिखते हैं तो अगर सरनेम हर नाम के साथ पढ़ना होगा तो क्या होगा, कम से कम 5 और नाम पढ़ने की जगह कम पड़ जाएगी सबको शामिल जो करना है। अगला गीत भी बहुत प्यारा फरमाइशी है एक, और वो सुनने से पहले हम कुछ नाम जल्दी से पढ़ देते हैं, एक मिनट के अंदर जो पढ़े जा सके। और आप में से जिनके नाम हम नहीं पढ़ पाए, हाथ जोड़ के हम माफी मांग रहे हैं। भाई आपको हम बहुत दिल से मोहब्बत करते हैं, बस क्या करें। संदीप मक्कड़, मनोहर लाल गांधी, धर्मवीर दिल्ली वाले, कमल साहनी, बुट्टी राम हांडा, जोगिंदर पाल, मक्कड़ पिंगला वाले चौक गोराया, जलंधर से, सेक्टर 67।

मोहाली, चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रिफ्लिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा, ग्राम पंचायत कालेगांव, जाफराबाद से सुधाकर राजे, प्रशांत राजे, कुमार संचित कुमार, प्रथमेश, प्रणाली सरवद, सानवी दतरंगी, भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक, व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण, और संस्कृति और पौरुष, आप सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया। ये प्यारा सा गीत, इसके साथ दिल का मेल बॉक्स आज यहाँ पर बंद हो जाएगा, ऐसा कहें नहीं, दिल का मेल बॉक्स तो खुला रहता है। आगे भी जो कार्यक्रम होंगे, समाचार सुनने के बाद भी जब आप आते रहें, तो गाने तो आपकी पसंद के ही बजेंगे और बातें भी आपको सुनने में अच्छी लगे, ऐसी ही होंगी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने, यांत्रिक मेधा, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। भारत और स्वीडन के बीच व्यापार 2025 में रिकॉर्ड 7.75 अरब डॉलर का रहा और वर्ष 2000 से 2025 के बीच स्वीडन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2.8 अरब डॉलर से अधिक का रहा। प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के बीच कल हेग में हुई वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक तथा रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का 6ठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति जिले के येरुपेडु में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के डॉक्टर एस वेंकटेश्वर ने इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 27 मई तक चलेगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया की लिया रोली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden, marking a historic milestone in India-Sweden relations. He will hold bilateral talks with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson to review cooperation in trade, green transition, AI, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. The two leaders will also address the European Roundtable for Industry alongside European Commission President Ursula von der Leyen. This visit is the third leg of Prime Minister Modi's UAE and European tour and his first to Europe since the India-EU Free Trade Agreement took effect in January 2026. Bilateral trade reached a record $7.75 billion in 2025, with Swedish investment in India totaling over $2.8 billion between 2000 and 2025. The partnership was strengthened during Mr. Modi's 2018 visit, which led to the Joint Innovation Partnership for a Sustainable Future. Yesterday, in the second leg of the Prime Minister's tour, India and the Netherlands have agreed to elevate their bilateral relationship to a strategic partnership following talks between Prime Minister Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. The leaders reviewed cooperation across trade, defense, technology, water management, clean energy, healthcare and education. Several agreements were signed to strengthen collaboration in key areas. Dutch Prime Minister Rob Jetten has highlighted the growing importance of ties with India and supported stronger economic and strategic cooperation. The Archaeological Survey of India, ASI, has granted Hindus unrestricted access to the monument at Bhotshala complex in Dhar district of Madhya Pradesh for worship and other purposes. The ASI's decision came a day after the Madhya Pradesh High Court ruled that Bhotshala in Dhar was a temple of goddess Saraswati. Quoting the ASI's order, an official said that Bhotshala was a center of learning and research on Sanskrit language, grammar and literature, besides being a temple. The official further said that the Hindu community shall have unrestricted access to the complex in connection with the ancient practice of learning and worship of goddess Saraswati. Indraprastha Gas Limited, IGL, has increased the price of compressed natural gas CNG by 1 rupee today. After the price hike, the new rate for 1 kilogram CNG in Delhi is 80.09 rupees and 88.7 rupees in Ghaziabad and Noida. In Gurugram, the new rate for 1 kilogram CNG is 85.12 rupees. Earlier this week, IGL increased the price of CNG by 2 rupees. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani on the 31st of May. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The India Meteorological Department, IMD, said that the southwest monsoon has advanced into some parts of Arabian Sea, Bay of Bengal, many parts of Andaman Sea and Andaman Islands, and entire Nicobar Islands. According to the IMD, southwest monsoon is likely to set in over Kerala on the 26th of this month. The weather agency predicted heavy to very heavy rainfall at isolated places over Andaman and Nicobar Islands, Sub-Himalayan region, West Bengal, Sikkim, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Kerala, Mahe and South Interior Karnataka during the next 3 to 4 days. Latvian President Edgars Rinkevičs has nominated opposition MP Andris Kulbergs as the country's next Prime Minister. Kulbergs, a member of parliament from the opposition United List party, has been asked to form a new government. At a press conference yesterday, the Latvian president said that he held intensive consultations in recent days with representatives of the political parties and factions in the Saeima following the resignation announcement by outgoing Prime Minister Evika Silinja from New Unity. And in badminton, the Indian pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will face the Indonesian duo Leo Roli Karnando and Daniel Martin in the men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. And that is the end of this news bulletin.

0: नमस्कार, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल एफएम गोल्ड और आप हमें सुन पा रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: मेरा नाम है रश्मि कुकरेती और कार्यक्रम है आज के मेहमान। दोस्तों, आज के मेहमान कार्यक्रम में आज एक विशेष शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप हैं राम सिंह बौद्ध जी। आपको शौक है तरह तरह के रेडियो जमा करने का, रेडियो से बहुत प्यार करते हैं। जब रेडियो की बात होती है तो हमें एक ही शेर याद आता है मजरू का, हम तो आवाज हैं दीवारों से छन जाते हैं। तो जो आवाज है ना, वो तो अगर कहीं भी आप सुनना चाहे तो ऐसे संचार के माध्यम मौजूद हैं जो कि आपके पास पहुंच जाएंगी। और रेडियो तो बहुत ही सुलभ, सरल और सटीक माध्यम है आवाज पहुंचाने का। तो राम सिंह बौद्ध जी, कैसा लग रहा है यहाँ आकर?
2: मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। सबसे अच्छा ये लग रहा है मुझे कि जिस स्टूडियो में गांधी जी सन 1947 में बैठे थे और उन्होंने अपना जो वक्तव्य दिया था, वहां पर मुझे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए आकाशवाणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
0: हमने सुना है कि आपके पास बहुत सारे रेडियो सेट्स हैं, बहुत प्यार करते हैं आप रेडियो
2: जी से। मैडम जी,
0: इसके बारे में कुछ बताइए।
2: शौक तो मैडम जी मुझे वैसे पहला शौक जो मेरा रेयर बुक्स, डाक टिकट, सिक्के वगैरह इकट्ठे करने का है। और कभी कभी कोई रेडियो अच्छा मिलता है, रेडियो भी उठा लाता हूँ। रेडियो सुनने का तो पहले से शौक था क्योंकि यही माध्यम था, टेलीविजन हमारे जमाने हुआ नहीं करते थे। लेकिन शौक ये तब मेरा बढ़ गया और मुझे लग गया जब 3 अक्टूबर 2014 से माननीय प्रधानमंत्री मन की बात शुरू की, तब जो मेरा इसकी तरफ रुझान बढ़ा। सब माध्यम उन्होंने छोड़कर, संचार माध्यम छोड़कर एक रेडियो को ही चुना, ये हमारे लिए और आकाशवाणी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। और आज मैं देख रहा हूँ जगह जगह लोग रेडियो नए भी खरीद रहे हैं, जो किसी पुराने थे वो भी रखे हैं। जैसे कि उन्होंने आह्वान भी किया कि कोई भी रेडियो क्या, कोई भी चीज जो अपने वो बेकार न समझे और अपने घर में भी जो है सब लोग एक संग्रहालय स्थापित करें। तो इसी कड़ी में मैंने सोचा कि प्रधानमंत्री भी आह्वान कर रहे हैं रेडियो करने का, तो मैडम पूरे देश में मैं घूमा, मैंने विभिन्न संग्रहालय देखे, हर चीज का संग्रहालय मिला, लेकिन मैंने कहीं भी रेडियो संग्रहालय नहीं देखा, ना किसी व्यक्ति विशेष के पास, ना संस्था के पास। तो मेरे मन में विचार कौन था, ये जो रेडियो हमारे मानव जीवन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग रहा है। और जैसे लोग आज मोबाइल चिपके रहते हैं, मैंने खुद देखा अपने जमाने में लोग इससे भी चिपके रहते थे, खेत हो, खलियान हो, रसोई हो, घर हो, सब जगह रेडियो का बोलवाला था और रेडियो लोग ले जाते। कहीं ये भी देखा मैंने जब रिश्तेदारी में लोग जाते थे तो रेडियो साथ ले जाते थे। और क्रिकेट के शौकीन, कब जब टेलीविजन तो हुआ नहीं करता था, क्रिकेट के शौकीन मैंने देखा छोटे छोटे पॉकेट रेडियो आते थे, जेमा रखे रहते थे और कमेंट्री बड़े उससे चाव से सुना करते थे
0: जी।
2: सबसे सस्ता माध्यम है, बस 2 सेल लगाइए ज्यादा ज्यादा 20 रुपए के और 3 महीने आराम से सुनिए। और कहीं भी दूर मैं दराज में, खेत खलियान में, रसोई में, आप बिस्तर में भी हैं तब भी रेडियो को जो सुन सकते हैं, और बहुत सरल माध्यम है
0: जी। और जो ये बात आप कह रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि हम आगे चलने से पहले क्यों ना कहीं भी सुन सकते हैं, तो अभी फिलहाल एक गीत सुन लेते हैं। तो कौन सा गीत सुनाना चाहेंगे?
2: भारत को आजादी दे दी बिना खड़क बिन ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।
0: वाह, तो आइए सुनते हैं जागृति फिल्म का ये गीत
2: जी।

0: बहुत ही उम्दा गीत, बहुत ही सुंदर मीठा सुरीला और संदेश प्रद गीत आपने सुनवाया हमारे सुनने वालों को। जैसे कि रेडियो है हमारा, आकाशवाणी है, ये तो भारत का लोक प्रसारक तो है ही, जो कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।
1: आपका लोगो भी, लोगो भी जो मैं देखता हूँ आकाशवाणी का, उसमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का ही लगा रहता है
0: जी। तो हमेशा जो यहाँ के कार्यक्रम होते हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है कि सबको कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा पहुँचे, लाभ पहुँचे। तो कभी आपको ऐसा लगा कि मैं सुनता हूँ, जुड़ा हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ तो आनंद मिल रहा है, फायदा हो रहा है? फायदा मतलब ज्ञान विज्ञान की बातें सुनने को मिलती है।
1: रेडियो एक ऐसा सुलभ माध्यम है कि इससे किसी भी समय, जैसे मैं देहाती प्रोग्राम सुनता है तो 6:20 लगा लिया, वो टेलीविजन में सुलभ नहीं है। हमें रेडियो देहाती प्रोग्राम देता है, कृषि कार्यक्रम देता है और ज्ञानवर्धन के बहुत से कार्य, स्टूडेंट के लिए भी कार्यक्रम, मतलब कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है जो हमारे ज्ञान ज्ञानवर्धन न हुआ वो। और एक और बताना चाहूंगा, आज भी मैं ये मानता हूँ सबसे सटीक सच्ची और अच्छी खबरें जो है वो रेडियो के माध्यम से ही आदमी को सुन सकता है, और खबरों में थोड़ा भ्रम हो सकता है लेकिन आकाशवाणी की खबरों में कोई, मैं रेडियो में भ्रम नहीं मानता।
0: हाँ, मतलब विश्वसनीय,
1: विश्वसनीय, विश्वसनीय खबरें जो है आज भी रेडियो की है वो आपको अनवरत सेवाएं देता है। कहीं भी चले जाइए, पहाड़ में हूँ आप, कहीं भी बैठे हूँ आप, रसोई में हूँ, मतलब इतना सुलभ साधन है। हमने जिसका वो जमाना देखा है कि जब ये टेलीविजन नहीं हुआ करता था तो बहुत महत्व था रेडियो का, हर घर में आदमी रेडियो रखता, जिस घर में रेडियो नहीं होता लोग कहते थे रेडियो नहीं तेरे पास।
0: अब तो रेडियो सेट्स भी हैं और साथ ही आकाशवाणी का मोबाइल ऐप भी है न्यूज ऑन एयर, और साथ ही तरह तरह के जो हम मोबाइल उपलब्ध है उसमें भी आकाशवाणी की जो प्रसारण है वो सुन सकते हैं और जुड़ सकते हैं।
1: मैं तो ये चाहूंगा जैसे आजकल विद्यार्थियों को जो मोबाइल दे रहे हैं और वो टेबलेट्स वगैरह दे रहे हैं या कर्मचारी दे रहे हैं, उन्हें ये भी देना चाहिए रेडियो, जिससे कि गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो सुन सकें, लोगों को बता सकें। क्योंकि टेलीविजन हर जगह ले जाना संभव नहीं, भले मोबाइल में टेलीविजन आ गया है लेकिन वो बात नहीं हो सकती जो मतलब रेडियो सीधा बोलता है।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही राम सिंह जी कि यदि हर व्यक्ति के पास, हर छात्र के पास एक छोटा सा रेडियो सेट मौजूद हो तो कहीं भी जाएं, जैसे हम मोबाइल लगते हैं छोटा सा सेट, कहीं भी जाएं, क्योंकि आकाशवाणी से छात्रों के लिए, हर व्यक्ति के लिए प्रोग्राम रहते हैं, समाचार रहते हैं, जो कि आपने कहा कि विश्वसनीय खबर वो रहती है। रेडियो के साथ आप जुड़े रहें तो हम कहेंगे कि आप संसार के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। और कई ऐसी घटनाएं भी हुई हैं कि कई ऐसे अवसर भी आए हैं कि कोई आपदा आई हो तो भी रेडियो ने बहुत काम किया है। जब सारे संपर्क के साधन टूट गए तो लोगों ने रेडियो सेट के जरिए समाचार सुने, रेडियो सेट के जरिए मदद पहुंचाई है, संदेश पहुंचाए हैं और परिवारों को जोड़ा है, ये भी हुआ है। एक बात आपने इससे पहले बहुत अच्छी कही थी कि आप देखते हैं जब, क्योंकि आप तो गजरौला में रहते हैं तो आसपास पूरा कृषि का क्षेत्र भी है, और तो आप देखते हैं कि गांव देहात के लोग जो है आज भी खेतों में या चलते फिरते रेडियो से जुड़े रहते हैं, कृषि कार्यक्रम सुनते हैं। तो उसका अनुभव कैसा रहा है?
1: उसका अनुभव ये है मैडम, 7:20 पे आपका कृषि कार्यक्रम आता है
0: जी,
1: जब ये हरियाणा में देहाती प्रोग्राम खत्म हो जाए तो 7:20 पे चलता है, उसके बाद जो सीधा कृषि कार्यक्रम आता है। तो मैंने लोग बाग देखा है कि जल्दी जल्दी काम निपटाया या देखा, क्योंकि वो प्रसारण ऐसा प्रसारण टेलीविजन पर नहीं होता। तो ज्यादातर जो पुराने लोग हैं या जो मोबाइल को नहीं करते उस कार्यक्रम को जो अपना रेडियो सेट कर देते हैं, रखते हैं थोड़ा समय निकाल के, चाहे भले ही खाना खा रहे हो तो सुनते हैं कार्यक्रम को और उससे बड़ी अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं।
0: हाँ देखिए, उसमें तो ये भी है ना कि आपको जरूरी नहीं कि एक जगह बैठ के कुछ देखना है या हाथ में कुछ होना चाहिए, आपने तो उसको ट्यून किया अपना मनपसंद चैनल और अपने काम में लग गया, है ना,
1: गया वो सुनाता रहेगा
0: जी।
1: टेलीविजन का वो बैठना ही पड़ेगा तभी आप देख सकते, काम भी छूटेगा, लेकिन रेडियो के साथ ऐसा कुछ नहीं, आप अपना रसोई में काम भी कर रही हैं, जो सुनने वाले रेडियो एक साइड में रखा है, आपको मनोरंजन करना है तो गाने बज रहे हैं उसमें, आपको देहाती प्रोग्राम सुनना होगा, महिलाओं का प्रोग्राम आता है रेडियो में बहुत अच्छा, वो टीवी पे नहीं आता
0: जी,
1: वो दोपहर में आता है, आपने देखो महिलाओं का प्रोग्राम आता है।
0: तो महिलाओं का आपने कहा, और महिलाओं को क्या, हम सबको भी गीत संगीत बहुत पसंद,
1: गीत संगीत
0: है
1: बहुत,
0: तो हम अभी भी एक और गीत सुनवाते हुए चलते हैं, बताएं आपकी पसंद का गीत।
1: मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है,

0: बहुत सुरीला गीत था ये, हमने जो गीत सुना आपकी पसंद का। और अब वापस आते हैं आपके संग्रहालय पर। आपने बताया कि ये यात्रा तब शुरू हुई जब प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम मन की बात से आप जुड़े, तो आपके मन में ये विचार आया कि क्यों ना संग्रहालय बनाया जाए। तो इस यात्रा का अनुभव कैसा रहा, उसके बारे में बताएं।
1: यात्रा करो ऐसा, जब जो के प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम शुरू किया मन की बात रेडियो से ही, तो लोगों में उत्साह बढ़ा और लोगों ने सोचने को मजबूर हुए कि भाई प्रधानमंत्री टेलीविजन तो बहुत अच्छा माध्यम है, रेडियो को ही क्यों चुना
0: जी।
1: इसमें जो है हमारे प्रधानमंत्री की सोच का सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री दूरदर्शी तो है ही, तो उन्होंने दूरदर्शन परिचय देते हुए टेलीविजन को या मोबाइल को ना वो करके रेडियो को ही सुना, क्योंकि आज भी रेडियो ज्यादातर सब जगह सुगम सुलभ है। कभी कभी बिजली नहीं भी आती है तो आपका टेलीविजन डिब्बा बना रखा रहेगा, वो कुछ नहीं कर सकते आप उसे, मोबाइल आपका चार्ज नहीं होगा डिब्बा बना रखा रहेगा, लेकिन इसके साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे सुलभ और बढ़िया माध्यम रेडियो है हमारा संचार का माध्यम।
0: अभी आपके पास कितने रेडियो सेट्स इस समय हैं?
1: मेरे पास मैडम इस समय तो वैसे 1400 रेडियो है।
0: अच्छा।
1: लेकिन 1100 डिफरेंट रेडियो, मतलब
0: अलग अलग
1: अलग अलग मॉडल के विभिन्न कंपनियों के हैं, मतलब हर देशों में जहाँ जहाँ रेडियो बनते थे जैसे जैसे मिलता रहा वो मैं उन्हें इकट्ठा करता रहा।
0: और तो पहला रेडियो जो सेट था वो आपके पास कौन सा था, मतलब इस संग्रहालय का?
1: मेरा जो पहला मार्कोनी फोन है सन 1900 का है।
0: अच्छा।
1: हाँ
0: 1900 का
1: है मार्कोनी, जो कि हमारे यहाँ तो
0: यानी कि एक शताब्दी से भी पुराना।
1: जब तो हमारे यहाँ आकाशवाणी शुरू भी नहीं हुई थी
0: जी,
1: ये रेडियो शुरू भी नहीं हुआ तो तब के, क्योंकि विदेशों में अमेरिका में बहुत पहले हो चुका था
0: जी,
1: तो 1900
0: सेट आपके पास है?
1: वो सेट मेरे पास है। और जो एक सेट है मेरे पास अमिताभ बच्चन ने कुली फिल्म में यूज किया है।
0: अच्छा।
1: हाँ उसका मॉडल मेरे पास है। एक पीके में यूज किया गया है उनके द्वारा, वो भी सेट है। मतलब इस प्रकार के आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के सेट हैं।
0: हाँ, तो जब आपने 2014

0: में ये शुरुआत की, तो आपके पास कितने रेडियो सेट उस समय मौजूद थे? मुझे लगता है उस समय भी काफी सारे रहे होंगे।
1: उस समय भी 100-200 रहे होंगे। उसके अच्छा। बाद तो मुझे ऐसा शौक लगा, प्रधानमंत्री जी ने एक लगा दिया 100। एक तो हर महीने उनका आता तो बड़ा अच्छा लगता है, लोग जुड़ते हैं, मेरा पूरा परिवार देखता है और लोगों को मैं बैठाता हूँ, स्टूडेंट को बताता हूँ, तो बड़ा अच्छा।
0: यानी सब लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं,
1: क्योंकि मेरे पास काफी बड़ा है, हॉल है
0: जी,
1: उसमें जो है 10-20 के 50 कुर्सी लग जाएंगी, वहाँ बैठ जाते हैं, लोग सुनते हैं, तो रेडियो सेट है काफी बड़ा, उसकी आवाज बहुत अच्छी आती है, तो लोग बड़ा वो मानते हैं। और प्रधानमंत्री उसमें साथ में ये भी देखना पड़ता है, आजकल तो सर्वदर्शी का जमाना है, टेलीविजन भी लगाना पड़ता है,
0: यानी कि दूरदर्शन भी लगा देते हैं। हाँ, और आकाशवाणी
1: भी चलता रहता है,
0: मतलब देखने वाले देखे, सुनने वाले सुने और दोनों माध्यमों का आनंद माध्यम लेते हैं।
1: जाता है, हाँ।
0: जी,
1: तो और कुछ लोग उस टाइम नहीं सुन पाते, तो आजकल ये भी सुविधा है, आपका ऐप लोड उसमें हो जाता है, तो बाद में रात देख लेते हैं लोग, जो कुछ मोबाइल से देख लेते हैं, कुछ द्वारा टेलीविजन देख लेते हैं
0: जी।
1: हर संडे के आखिर उसको 11 बजे आता है, कोई नहीं है, कहीं बाहर चला गया, शौक है, जैसे मुझे शौक है मन की बात सुनने का, तो मैं शाम को सुनूंगा,
0: अच्छा,
1: या अगले दिन सुनूंगा, लेकिन ऐसा है कि उसके बिना नहीं सुनेंगे प्रोग्राम, ऐसा लगता है यार कुछ जो छूट गया आज तुमने सुना नहीं कुछ जो है,
0: हाँ,
1: तो वो सुनना एक जरूरी सा हो गया, बड़ा अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा ये लगता है हमारे प्रधानमंत्री लोगों से मन की बात करते हैं
0: जी,
1: और सामने उनसे रूबरू होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मतलब ये किसी उससे ना बात करके किसी अपने घर के सदस्य से ही बात कर रहे हैं
0: जी।
1: तो ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का मन की बात नहीं बल्कि पूरे जनगण और पूरे देश की बात है
0: जी,
1: और इसमें जो है पूरे हमारे देश का हित छुपा हुआ है।
0: देखिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात जो रहती है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, वो तो अपने परिवार जनों से जुड़ते हैं, वो पूरे देश को ही अपना परिवार मानते हैं, और जब पूरे परिवारजनों के साथ वो जो जुड़ते हैं और उनके कल्याण की बातें करते हैं, अच्छा अच्छा जिन्होंने काम किया है उनसे बातचीत करते हैं, तो वो सुनकर हम सबको बड़ी प्रेरणा मिलती है। और आप भी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि सब जो गांव वाले हैं, आसपास के लोग हैं, बड़े हॉल में बैठते हैं, सुनते हैं, तो ये तो बहुत एक अच्छा मुझे लगता है अनुभव रहता होगा,
1: सब लोग प्रेरित करता है, उसका इंतजार देखते भी, आज संडे आएगा, लोग जल्दी काम धंधा देख कर वो करके समय निकाले, 11 बजे जो है ज्यादातर आज तो आप जानते हो टीवी के पास ही बैठ जाते हैं, टीवी में रेडियो ऐप है तो सब सुंदर हो जाता है, लेकिन मैं अपने संग्रहालय में, क्योंकि रेडियो संग्रहालय है तो वहाँ मैं रेडियो भी चलाता हूँ।
0: तो जो आपका संग्रहालय है इसमें कुछ फीस वगैरह आप लेते
1: नहीं,
0: हैं?
1: नहीं, कोई निशुल्क है,
0: देखने वालों
1: जनहित में निशुल्क काम है।
0: अच्छा, ये निशुल्क काम है,
1: निशुल्क जनहित में।
0: तो जो इसकी देखभाल वगैरह सब अपने जेब से
1: करता हूँ, जो मेरे रिटायरमेंट का फंड्स वगैरह वो मैंने सब इसमें लगाए हैं, क्यों खरीदारी हो चाहे उसका वो सब इसमें लगाता हूँ।
0: अच्छा,
1: हाँ।
0: तो ये तो आप तो बहुत एक तरह से हम कहेंगे सेवा का काम आप कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, और आकाशवाणी जब आपसे जुड़ रहा है ये तो हम समझ सकते हैं कि जन जन के मन में कितना प्रेम है आकाशवाणी के लिए, रेडियो के लिए, और क्योंकि आकाशवाणी तो हम कहेंगे कि देश की आवाज है, है ना, और ये आवाज के कहीं ना कहीं संवाहक हम कहेंगे आप भी बनते हैं,

0: आपने बताया कि आपके पास बहुत सारे रेडियो सेट्स हैं, तो ये सारे चलते हैं रेडियो सेट्स, आप सब सुनते हैं?
1: नहीं, मैं चेक करता रहता हूँ, अधिकतर तो उनमें चल ही रहे हैं
0: जी। बहुत बढ़िया,
1: क्योंकि रेडियो में ये होता है कि ये अगर नहीं चलाओ कुछ दिन तो धूल से या सीलन से इनके वॉल्यूम जो है सर्किट वो
0: तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ रहता ही है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो,
1: लेकिन अधिकतर मैं चलते ही रखता हूँ और सही पोजिशन रखता हूँ, यानी टूटे फूटे हूँ मतलब देखने में सही लगा और उसमें सही लगा। अधिकतर मेरी कोशिश ये रहती है कि जो अच्छी किस्म का रेडियो ले जाए जो देखने में भी अच्छा लगे।
0: सुनने वाले जब आते हैं आपके पास, जो रेडियो के चाहने वाले हैं, उनके साथ किस प्रकार की बातें होती हैं, कैसा अनुभव रहता है, वो लोग क्या कहते हैं जब आपका म्यूजियम देखते हैं?
1: अब लोग आते हैं पुराने तो वो अपनी यादों में खो जाते हैं।
0: अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं वो अपने पुराने समय में चले जाते हैं।
1: रेडियो तो हमारे पास था,
0: हाँ।
1: ये रेडियो हमारी माताजी ने खरीदा था, ये हमारे पिताजी ने खरीदा था, ये हमने खरीदा था, मतलब वो पुराने समय में खो जाते हैं, फिर जो याद करते हैं ये रेडियो क्या हुआ करता था, ये सब उपकरण था, ये सब लोगों को जोड़ता था। मैंने खुद देखा है, एक गांव में मुश्किल से दो चार लोगों के पास रेडियो हुआ करते थे, या एक बड़ा रेडियो होता था गवर्नमेंट ने भिजवाए थे ग्राम पंचायत में।
0: रेडियो होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी।
1: तो ज्यादातर ग्राम पंचायत में एक बड़ा मशहूर कार्यक्रम है, देहाती कार्यक्रम, हरियाणा जिसे बोलते हैं, वो आता था शाम को 6:20 पे, शायद अब भी समय हुई है, हमारे टाइम पे भी 50 साल पहले भी समय हुई था उसका, तो देहात में उसे लोग बड़ा सुनते थे। मैंने देखा जल्दी जल्दी काम निपटाया, शाम को पशुओं को जो भी है या घर का निपटा के भैया जो है हरियाणा कार्यक्रम आएगा, तो उसे लगाते थे, वो बड़ा सेट होता था लकड़ी में, और 10-20 क्या 50 सैकड़ों आदमी जो सुनने के लिए बैठ जाते थे उसे, जो तो 40 मिनट का प्रोग्राम आता था, आज भी वो प्रोग्राम आता है।
0: तो आपने जैसे देहाती कार्यक्रम की बात की, वहाँ कृषि का किस प्रकार से है, जो गजरौला में कृषि का ही क्षेत्र,
1: ज्यादातर मेरा तो कृषि प्रधान क्षेत्र है पूरा, वैसे हालांकि
0: उपज वगैरह,
1: हालांकि गजरौला औद्योगिक क्षेत्र है, थोड़ी सी फैक्ट्रियां भी है, लेकिन वहाँ पर जो ज्यादातर कृषि का एरिया।

0: पूरा जो सब किसान है।
1: तो गन्ना
0: है, गन्ना है, गन्ना गोदा से होता है, धानी बहुता से होता है, गेहूं भी बहुत से होता है, मतलब पूरा मतलब क्षेत्र ऐसा है किसी चीज की कृषि उपज कोई कमी नहीं है।
1: तो गन्ना मिल वगैरह भी होंगी मुझे लगता है।
0: गन्ना मिल भी है, बागवानी का क्षेत्र भी है।
1: हाँ, बागवानी का क्षेत्र है, बाग क्षेत्र बहुत मशहूर है आपके तो।
0: और वहाँ उधर का अमरोहा, गजरौला, ये हसनपुर है, हो गया हमारे धनुषवाड़ी, आम की बेल्ट है।
1: आप जैसे जो लोग हैं वो देश की धरती माटी से जुड़े हुए लोग हैं, है ना। और जो बार बार आप याद कर रहे हैं आकाशवाणी के कार्यक्रमों को, तो यही आकाशवाणी करती भी है कि जन जन तक वो बातें पहुंचाना कि जिससे उनके जीवन में रोजमर्रा के काम में उनको लाभ पहुंचे, अच्छी बातें पहुंचाना, उनके हित के बारे में सोचना, यही आकाशवाणी का हमेशा से ध्येय रहा है। ध्येय वाक्य भी वही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।

0: चलते चलते राम सिंह जी क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को?
1: मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा सुनने वालों को, भाई प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि संग्रहालय की संस्कृति विकसित करें, रेडियो संग्रहालय बनाए अपने घरों में, थोड़ा थोड़ा और संग्रहालय बनाए, और भी नई किताब होती है तो आजकल लोग जो बेच देते हैं किताबों को बेचैनी सुरक्षित रखें, ज्ञान वर्धन का बहुत ध्यान रहेगा आने वाली पीढ़ी के लिए, तो ऐसे अपने घरों में ही बनाए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमसे जो आह्वान किया है कि संग्रहालय संस्कृति को पुनर्जीवित करना होगा और हमें उनका संरक्षण करना होगा, तो मैं तो इसी संरक्षण और पुनर्जीवन का उसमें लगा हूँ।
0: संग्रहालय में आपने बताया था कि बहुत सारी पांडुलिपियां भी हैं
1: जी,
0: तो हम तो ये कहेंगे कि आपके लिए बहुत बहुत हमारी ओर से शुभकामनाएं आकाशवाणी परिवार की ओर से, गोल्ड चैनल की ओर से, आप इसी तरह से आकाशवाणी से जुड़े रहें, खूब सारे कार्यक्रम सुने और अपने सुझाव भी हम तक पहुंचाते रहें, और श्रोताओं के सामने आपको लाने का हमारा उद्देश्य भी यही था, क्योंकि हमें लगता है कि दूसरी तरफ से किस प्रकार का सोचना है वो सोच आपकी सामने आती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है मन की बात, जो जन जन की बात है, वो तो आकाशवाणी से हर माह के जो अंतिम रविवार में प्रसारित होता है 11 बजे, और पूरा देश सुनता है, तो बहुत अच्छा लगा कि उस कार्यक्रम से आपको प्रेरणा मिली। इतना अच्छा म्यूजियम आपने बनाया, संग्रहालय बनाया, हम तो यही कहेंगे कि आप आकाशवाणी से हमेशा जुड़े रहें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे इस स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी बातचीत आपने हमारे श्रोताओं के लिए की।
1: इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, यहाँ आकर मुझे एक जो अनुभव मिला है मैं उससे भावात्मक भी हो गया हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद राम सिंह जी आपका, और इसी के साथ हम समेटते हैं आज के मेहमान का ये अंक और विदा लेते हैं अपने सुनने वालों से, और कहते हैं नमस्कार।
1: नमस्कार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर श्री मोदी स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
1: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, एआई, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुस जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को उचित नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक चलेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमरीका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के यानिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रूली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जय हिंद फौजी भाइयों, इस वक्त के कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्मी गीत। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में आशिक बनाया आपने फिल्म से इस गीत को। गीतकार है समीर और संगीतकार है हिमेश रेशमिया।

लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम में अगला गीत राहत फतेह अली खान की आवाज़ में कलयुग फिल्म से। इस गीत को लिखा है सैयद कदरी ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में परिणीता फिल्म से। स्वानन किरकिरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शांतनु मोहित्रा ने।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

Just अभी आप सुन रहे थे मैंने प्यार क्यों किया फिल्म से गीत सोनू निगम और साथियों की आवाज़ों में। अगला गीत लीजिए सुनिए जहर फिल्म से। आवाज़ें है आतिफ असलम की, गीतकार है सैयद कदरी और संगीतकार है रूप कुमार राठौड़।

फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम के अंत में फौजी भाइयों सुनेंगे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में चोरी चोरी छुपके छुपके फिल्म से इस गीत को। अदनान के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है अनु मलिक ने।

0: हम आकाशवाणी लेह से बोल रहे हैं। दिन के 1:50 हो रहा है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू में खबरें, मिड डे न्यूज़ और दोपहर समाचार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्वीडन के 2 दिन के दौरे पर आज सहपहर गोथेनबर्ग पहुंचने वाले हैं, जहां वो स्वीडन के अपने हममनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक का जायजा लेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने बाहमी ताल्लुकात को क्लीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचा दिया है। अहम शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम करने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए गए। भारत ने आबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर हमलों की मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। आलमी सेहत तंजीम ने कांगो और युगांडा में एबोला बीमारी फैलने को बैन अलाक्वामी तशवीश की हामिल सेहत आम्मा की इमरजेंसी करार दिया है। मौसमियात महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर, मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद

0: आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: नजे आकाशवाणी लेने जुंजिक तंगिन निमे छुचोत इंगिस्तांस करमा ngapchunga nga chado kasata ladak sana nasul sana zat

0: नीदरलैंड्स.
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए. इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है. इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं.
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है. भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है. भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है. मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं. इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा.
0: Nistung nishus tsakshik gonspa salazat nistung nishus tsap dun mirsi si thotang delte self enumeration portal le gozuk stendel dering le nanga ladak ujungas de sheshkong junbe jate no etus ladak ujungas de sheshkong junba Vinay Kumar Saxena mimang skunla mirsi si thwenanga rang tang rang e Lurgu Shaches Yotkani e portal in Nanga, Jagma Chungin Nangloga, Manga Sangma, Tushese, Jua Pula Zate no. Delhi Teams Kunse, Nite Dirguks, Dishoks Tang Dirguges Sanskun la Piloga, Binkantang Delte, Galkan Pivi, Kulkarni Tang, Manish Gun, CBI Jagma Chupia, Zumste Nok Mixale, CBI Judge, Ajay Gupte, Itoa Starchotan, Yotkanesko La Shada Zadin Jitang Galsane, Piloga, Pingste, Ika, Starchotman, Dulces and Okmoltoyang, CBI Shaches Nansin, Kulkarni, Subject Export Chikino, Yang Nistong Ishusaruk, Need UG, Dirguks, Chokantang, Del Yotkanjik and Okmoltor, CBI Shachesla, Kulkarni, Chemistry Lecturer, Reno, Yangkong, NTA Tsapschoste, Guxinanga, Delta Yoten of Moltor, Central Board of Secondary Education, CBSE, Zindar Gupane, Palas, Kadik Sum, Lab Gosheshan, Kartan, Joste, Enoch, Ibo, Talo, Julel, Dan, Pala, Larlen, and I Countess Enoch, Yang Bode, Is Kadik Suminang, Nispo, Gagare, Nanga, Golkanis Kadik Yongo, Smolteoteno, E Tarzatbo, Gagare, Yontane Tapjus Nistong Nishu, Nangjin Tang, National Curriculum Framework for School Education, Nangjin La, Gozugo Jatjasenok, Akashuanilinita, Nasulton.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Casata la salut de chemina mentolandistan sonam chishki de salkani e logon sanazat

कसता फ्लेमेलो एटिग्रिमिस तिंगजुक पिका चुरा लिया है तुमने फ्लेमेलो अलकायानिक तंग शान ने सनसत सुधाकर शर्मेर सुमस्कानी लोयांग रिकन हिमेश रेशमिया।

0: ngaji akashwani leni shot pitogo chu chu tuk chatu ka sata akashwani dali ni skola hindi antasing ni arjuna natsul kun sanachat
1: कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज अपने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। गोथेनबर्ग रवाना होने से पहले नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन स्वयं एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी को विदाई दी। नीदरलैंड्स की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ प्रसिद्ध अफ्लाउटाइक बांध का भी दौरा किया। ये यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंबात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि एनआईडी जैसे संस्थान युवाओं को नवाचार और कौशल विकास के लिए सही मंच प्रदान करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के दो पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज़ रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन।

दोस्तों, आखिर हेलेन का जन्म कहाँ हुआ, वो भारत कैसे आई, कैसे उसकी ज़िंदगी दूसरे विश्व युद्ध का शिकार हो गई, कैसे एक विदेशी भूखी प्यासी लड़की जो सड़कों पर दो रोटी के लिए ठोकरें खाती फिरती थी, वो बॉलीवुड की सबसे अमीर डांसर बन गई, और आखिर कैसे एक आइटम गर्ल सलमान खान की माँ बनी। जानेंगे हेलेन की अनसुनी और रोचक कहानी, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक और गीत के लिए।

हेलेन का जन्म बर्मा यानी कि आज के म्यांमार में 21 नवंबर 1938 को हुआ। उनकी माँ का नाम था मर्लिन और पिता का नाम था जॉर्ज, जो कि एक एंग्लो इंडियन थे। हेलेन के जन्म के कुछ ही दिनों बाद हेलेन के पिता की मौत हो गई और इसके बाद इनकी माँ ने एक ब्रिटिश सैनिक से दूसरी शादी कर ली और इस तरह हेलेन के पिता एक अंग्रेज़ बन गए। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो जापान ने बर्मा पर हमला कर दिया और लड़ते हुए उनके दूसरे पति भी शहीद हो गए। बर्मा की हालत बिगड़ गई और युद्ध का ऐसा भयानक असर हुआ कि लोगों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और उन्हें भागने वालों में से हेलेन का परिवार भी था। हेलेन अपने माँ और भाई बहन के साथ कलकत्ता पहुँच गई और इस तरह वो बर्मा से भारत आ गई। तो सुनते हैं यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।

कलकत्ता पहुंचने के बाद उनकी हालत और बुरी हो गई थी। खाने के लिए रोटी तक नहीं थी और सिर ढकने के लिए ना ही छत। हेलेन की माँ एक नर्स का काम करने लगी और हेलेन ने भी छोटी मोटी मजदूरी करना शुरू कर दिया। हालांकि इससे उनकी हालात कभी नहीं सुधरी और वो खाना जुटाने में भी सफल नहीं हो पाए और हेलेन अपनी माँ के साथ कलकत्ता से बॉम्बे आ गई। ये वो समय था जब बॉलीवुड अपने शुरुआती दौर में था और कुक्कू मोरे नाम की एक एंग्लो इंडियन लड़की फिल्मों में डांसर के तौर पर खूब फेमस थी। हेलेन की माँ ने उससे विनती की और खुद को एंग्लो इंडियन बताकर उससे सहानुभूति की भीख मांगी और हेलेन को फिल्मों में काम दिलवाने के लिए कहा। इस तरह कुक्कू मोरे ने हेलेन की फिल्मों में एंट्री करवाई और एक कोर्स डांसर के तौर पर हेलेन ने फिल्मों में कदम रखा। तो सुनते हैं यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, हेलन ने शुरुआती दौर में आवारा अब्दुल्ला, शाबिस्तान और अलिफ लैला जैसी फिल्मों में कोर्स डांसर के तौर पर काम किया और इस तरह बर्मा से जान बचाते भारत आई एक बेसहारा लड़की की बॉलीवुड में एंट्री हो गई और इसके बाद हेलन ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में छोटे मोटे गानों पर अपनी कमर मटकाई, जिनमें मयूर पंख, हलाकू, मिस्टर लंबू और यहूदू की लड़की जैसी मूवी शामिल रही और वो लगातार काम करने लगी। हालांकि बहुत काम करने के बाद हेलन को अभी तक वो पहचान नहीं मिली थी जिसके लिए

दोस्तों, 1960 में आई मूवी हम हिंदुस्तानी, जिसका ये गाना छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, हर 15 अगस्त और 26 जनवरी पर बजता, और इस मूवी में हेलेन ने सेकंड हीरोइन के तौर पर काम किया। इसके बाद आई मनोज कुमार की सबसे यादगार मूवी, जिसका नाम था वो कौन थी, और इस मूवी के गानों की तो बात ही अलग थी, जो दिल में सीधा उतर जाती थी। अपने पहले पति के साथ डिवोर्स होने के बाद हेलेन की मुलाकात लेखक सलीम खान से हुई, जिन्हें सलीम जावेद की जोड़ी के तौर पर खासी शोहरत मिली थी। हालांकि सलीम खान पहले से शादीशुदा थे, लेकिन हेलेन से शादी करके उन्होंने उनको दूसरी पत्नी का दर्जा दिया। इस तरह से वक्त गुजरने के बाद सलीम खान के बच्चे और फैमिली ने हेलेन को एक्सेप्ट किया। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते इसी घड़ी एक और शख्सियत के ज़िंदगी की अनसुनी कहानी लेकर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए मैं जमीला खातून आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। जय हिंद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कसता टशिचो मिसल कनी इलुबां सनजात

0: गुड पीस प्रॉस्पेरिटी, हम कोशिश करेंगे वही माहौल तोड़ने वाली ताकतें चप्पे चप्पे पे हैं, जोड़ने वाली कम है, तो हमें उन लोगों को उजागर भी करना है जो मोहब्बत का, इंसानियत का, प्यार का पैगाम दे। हमसे बेहतर धरती कोई नहीं, ये ऋषियों की धरती है, पीर पैगंबरों की धरती है।
1: ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन ने सरकार से कहा है कि वो श्रीनगर शहर के ऐलानशुदा तरक्याती और तामीराती प्रोजेक्टों पर नजरसानी करके माहिराना राय हासिल करे। ग्रुप के चेयरमैन और साबिक गवर्नर के मुशीर खुर्शीद अहमद गनाई ने कहा है कि कॉन्वेंट संगरमाल ब्रिज और फ्लाईओवर के अलावा डलगेट पारिमपुरा फ्लाईओवर के मुजवजा मनसूबों पर तामीराती माहिरीन की राय हासिल करना नागुजीर है। इस सिलसिले में जीसीसी की एक मीटिंग मुनाकद हुई जिसमें अच्छम प्रोजेक्ट का पेशावराना तखमीना लगाया जाना चाहिए। कश्मीर की सकाफती विरासत को तहफ़ फराहम करने के लिए काम करने वाली कश्मीर हिस्ट्री फाउंडेशन के अहतमाम से श्रीनगर में द फर्स्ट ट्रैवलिंग म्यूजियम एंड कल्चरल फेस्टिवल के नाम से मुनक़द हुआ 3 रोज़ा प्रोग्राम आज इख्तिताम पज़ीर हुआ। प्रोग्राम के तीसरे रोज आज भी मुकर्ररीन ने कश्मीर की वसी तारीख पर मकाले पड़े। फाउंडेशन की डायरेक्टर सुनंदा नेहरू गुंजू ने प्रोग्राम के दौरान अंजाम दी गई सरगर्मियों के बारे में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया।
2: फर्स्ट डे था वो मेनली हिस्ट्री के ऊपर था, कश्मीर शैविज्म के ऊपर था और हमारे एंशियंट रूट्स क्या है, सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। सेकेंड डे पे आइकोनोग्राफी और स्कल्पचर जो मिडिवल कश्मीर में था फ्रॉम 7th to 12th century उसका जिक्र था। सलीम बेग जी ने ही टॉक्ड अबाउट हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी क्यूजीन, रतनलाल हांगलू जी टॉक्ड अबाउट एवोल्यूशन ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज, डॉक्टर एजाज नक्शबंदी ने श्रिंकिंग वाटर बॉडीज और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में बात की, क्रैप्स के बारे में सलीम बेग जी ने बात की। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सेशन हमने आज लिया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात किया, कर्नाटक म्यूजिक और वनवन का क्या रिजेम्बलेंस है, और लास्ट था हमारा ऑन आर्टिस्ट कश्मीर। एक सबसे बड़ा टेक अवे मेरा ये रहा कि लोग बोलते हैं कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए क्योंकि हमारे कल्चर के मुताबिक, हमारा एनवायरनमेंट, हमारे क्राफ्ट, हमारी हिस्ट्री, म्यूजिक, किसी को कुछ पता ही नहीं है, और ये आवाम तक पहुंचाने की और स्पेशली यंग जनरेशन को पहुंचाने की बहुत बड़ी जरूरत है।
1: नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हर सतह पर आवाम की राहत रसानी उनकी जमात का मंशूर रहा है। श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने पार्टी से वाबस्ता अरकान कानून साजिया से तलकीन की कि वह आवाम की खिदमत के लिए खुद को वक्फ रखें। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादी की मारूफ समाजी शख्सियत अली मोहम्मद शेख अली मोहम्मद के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। मरहूम पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के चचाजाद भाई थे। बीजेपी जम्मू कश्मीर के अहतमाम से आज जम्मू सूबे के कुछ अजला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत कई प्रोग्राम मुनाकद हुए। किश्तवाड़ में मुनाकद एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए पार्टी के प्रदेश सत्र शर्मा ने कहा कि बीजेपी के सियासी नजरियात के नतीजे में ये दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमातों में शामिल हो गई है। तकरीब से कानून साज असेंबली में हिजब इख्तलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने भी खिताब किया। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल और सीनियर लीडर राज्यसभा मेंबर इंजीनियर गुलाम अली खटाना के अलावा दीगर कई लीडर भी मौजूद थे। पार्टी की नायब सदर प्रिया सेठी ने अखनूर में एक ऐसी ही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाना बीजेपी का मंशूर है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने बारामूला जिले के पटन और करेरी इलाकों का दौरा करके और वहां के लोगों को दरपेश मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। शाहीन ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात मुतल्लिका हुकाम की नोटिस में लाएंगे। वादी के एक मारूफ थिएटर और टीवी रेडियो अदाकार शबीर हकाक के वालिद गुलाम नबी हकाक आज सुबह इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल पर कई सकाफती, समाजी, अदबी और थिएटर से वाबस्ता कई अफराद और अंजुमनों ने दुख और अफसोस का इजहार किया है। आकाशवाणी श्रीनगर के प्रोग्राम हेड गुलाम रसूल आखून और मारूफ थिएटर डायरेक्टर फिल्मसाज मुश्ताक अली अहमद खान ने भी मरहूम के इंतकाल पर सदमे का इजहार करते हुए शबीर हका के साथ हमदर्दी जाहिर की है। मरहूम की इज्तमाई फातिहा ने 20 मई बुधवार को सुबह 10 बजे मकबरा आखून साहब कनी मजार श्रीनगर में अंजाम दी जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस माह की 31 तारीख को अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुख्तलिफ मौजूआत पर इजहार ख्याल करेंगे। आकाशवाणी पर नशर होने वाले इस माहाना प्रोग्राम की 134वीं किस्त होगी। इस प्रोग्राम के लिए लोग अपनी आरा और तजावीज टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। तजावीज नरेंद्र मोदी ऐप या माई गोव ओपन फोरम पर भी भेजी जा सकती है। आम लोग इस मकसद के लिए 1922 पर एक मिस कॉल भी दे सकते हैं। तजावीज और आरा इस महीने की 29 तारीख तक भेजी जा सकती हैं। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने अवामी जमहूरियत कांगो और युगांडा में एबोला बीमारी के फूट पड़ने को अवामी सेहत से मुतलिक बैन अल अक्वामी तशवीश वाली हंगामी सूरत हल करा दिया है। WHO के डायरेक्टर जनरल

Murubdul matan topani sal kani ilu bang sanazad.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मुरुब डोलमेता एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये यूल्टन लुबांग सनाजात

0: Da sangi chere murub dol matan thopa nesal kani yul to nilu rik sa nazat. Nga che aka ashwani leni chut. Chani chut zot gya tans karma jib ju janga chadu kasata aka ashwani deli ni. Skun la sa macha sandhya nyu se nani ante si ngur tina na chul sa nazat.
1: Namaskar, Akashwani se samachar sandhya ke saath main Sir Firozi. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की. कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत. मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया. बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वरीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता. और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं. स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे. दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे. ब्यौरा हमारी संवाददाता से.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया. विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया. एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया. गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे. इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे. साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन.
1: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
3: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है. रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक, जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है. उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी. उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा. यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है. यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए. इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पासर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग. शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स.
1: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी. कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था. कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया. हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था.
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे. मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी. समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं. तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी.
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
5: NID एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब NID की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
6: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
5: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगे अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। NCB ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग NCB और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक NCB मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के NCB मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबू धाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जिससे 4 दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ स्टर्सन से वफ्द की सतह की बातचीत कर रहे हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दो तरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिली है। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन को कल केरलम के नए वज़ीर-ए-आला का हलफ दिलाया जाएगा। मास्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर समेत चार अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने शुमाली भारत में कल शदीद गर्मी की पेशगोई की है। और बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी विलिशेट्टी ने बाउजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में चांदी का तमगा जीता। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने दो रोज़ा दौरे में इस मुल्क के अपने हम मनसब के साथ दो तरफा बातचीत की। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दिगर बुनियादी शोबों में तआवुन को मुस्तहकम बनाने से मुतल्लिक 17 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। दोनों रहनुमाओं ने मग़रिबी एशिया की सूरत हाल और आलमी सतह पर तवानाई की सप्लाई, नेस तजारती नेटवर्क्स पर इसके असरात पर गहरी तशवीश का भी इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक नई रफ्तार पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने मुस्तकबिल में अपने ताल्लुकात को फ़रोग देने और आबी वसाइल, सेमी कंडक्टर्स, इख्तिरा, दिफा, पायदारी और नकलो हमल के शोबों में तआवुन को वसी करने के

0: छपे में खाका तैयार किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में आज स्वीडन के शहर गोदनबर्ग पहुंच गए हैं, जहां उनका खैर मकदम गोदनबर्ग लैंडवेटर हवाई अड्डे पर स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म वुल्फ क्रिस्टर्सन ने किया। जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा स्वीडन की फजाई हदूद में दाखिल हुआ, मेहमान खसूसी के तौर पर उनके हवाई जहाज की मुहाफजत स्वीडन के ग्रिपन लड़ाई जेट तैयारों ने शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को हवाई अड्डे पर बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और उनका इस्तकबाल भारतीय बिरादरी के अरकान ने बड़ी गर्मजोशी से किया। इस दौरे की खासियत दो वज़ीर-ए-आज़म की एक मुश्तरका खिताब है जो वो सनद से मुतालिक यूरोपीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस से करेंगे। सीओज की इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जनाब मोदी के साथ यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वोन देर लेयन शामिल रहेंगी। गोदनबर्ग से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत कर रहे हैं। तवक्को है कि दोनों रहनुमा तिजारत, एआई, स्टार्टअप समेत मुख्तलिफ शोबों में तबादले ख्याल करेंगे। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन की क्यादत में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में हलफ लेगी। कांग्रेस ने इस महीने की 14 तारीख को वी डी सतीशन को केरलम का अगला वज़ीर आला नामजद किया था, जिसके साथ ही 10 दिन से जारी सियासी ड्रामा और गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो गई। कांग्रेस की क्यादत वाले मुत्तहदा जमहूरी महाज यूडीएफ ने केरलम असेंबली इंतखाबात में 2/3 से ज्यादा अक्सरियत हासिल की, तहम मुख्तलिफ ग्रुपों की लॉबिंग और कारकुनों के एहतजाज के बायस मस्कूरा इत्तेहाद वज़ीर आला के नाम पर फैसला नहीं कर पा रहा था। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: कांग्रेस के सीनियर लीडर वी डी सतीशन कल केरलम के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। उनके हमरा 20 दिगर वज़रा भी हलफ लेंगे। नामजद वज़ीर आला वी डी सतीशन ने आज शाम गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें वज़रा की फहरिस्त पेश की। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 अफराद के बैठने के इंतजाम समेत वसी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज गुजरात के शहर गांधीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID के इख्तरा और इब्तदाई कारोबार के मरकज का इफ्तिताह किया। जनाब शाह ने इस मौके पर इस इदारे की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा इदारा है जो तख्लीकी सलाहियत को कारोबार से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि NID जैसे इदारे नौजवानों को इख्तरा और पेशेवराना तरक्की के मौजूं प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं।
3: NID एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब NID की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: मरकजी वजीर पीयूष गोयल भी इस मौके पर मौजूद थे। जनाब शाह गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने आज गांधीनगर में मदर डेयरी के 5 लाख लीटर की गुंजाइश वाले नव तामीर शुदा प्लांट का भी इफ्तिताह किया। अहमदाबाद में उन्होंने मिलियन माइंड्स टेक पार्क और ग्लोबल कैपेबिलिटी मरकज कैंपस का भी इफ्तिताह किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को साल 2026 के लिए पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दाखिला ने कहा है कि सदर जमहूरिया राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद होने वाली पहली शहरी एजाज से मुतालिक तकरीब के दौरान पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री अवार्ड्स अता करेंगी। इस साल भारत सरकार ने मजमूई तौर पर 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। रेलवे की वजारत ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पीछे के 2 डिब्बों में आग लगने के वाकये की आला सतह पर तहकीकात का हुक्म दिया है। आज सुबह तकरीबन 5:15 बजे कोटा डिवीजन के नागदा जंक्शन के करीब त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पीछे के 2 डिब्बों में आग लग गई। इन डिब्बों में एक गार्ड कोच और एक AC 3-tier कोच शामिल था। वजारत के मुताबिक कोच में नस्ब हिफाजती निज़ाम फौरी तौर पर मुतहर्रिक हो गया और ट्रेन खुद बखुद रुक गई। ट्रेन के अमले ने फौरन आग से मुतासिर दोनों डब्बों को अलग किया, जिसकी वजह से किसी भी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रेलवे के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने आज बेंगलुरु और मुंबई के

0: दरमियान एक नई एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअल वसीले से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन से कर्नाटक और महाराष्ट्र के दरमियान रेल कनेक्टिविटी में इजाफा हुआ है। जनाब वैष्णव ने इस मौके पर कहा कि जनूबी और मशरकी कर्नाटक के लोगों का एक देरीना मुतालबा पूरा किया जा रहा है। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि उम्मीद है कि बंगलुरु और मुंबई के दरमियान वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही शुरू हो जाएगी। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने आज दिल्ली सरकार की जानिब से हवाई जहाजों के ईंधन ATF पर वैल्यू एडेड टैक्स को 25% से कम करके 7% करने के फैसले की तारीफ की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब हवाबाजी का शोबा आलमी सतह पर ऑपरेशनल और माली दबाव का सामना कर रहा है, रियासती हुकूमतों के इस किस्म के सरगर्म इकदाम एयरलाइंस को जरूरी सहारा फराहम करते हैं और मुसाफिरों के लिए फजाई सफर को सस्ता रखने में मदद फराहम करते हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि महाराष्ट्र के विदर्भ जिले में किसानों की खुदकुशी की एक बड़ी वजह पानी की किल्लत है। उन्होंने ये भी कहा कि पानी की बचत इस बुहरान का मुअस्सर तरीन हल है। नागपुर में कौमी कॉन्फ्रेंस नागपुर जल संवाद से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि पानी के तहफ्फुज़ से मुतअल्लिक कोशिशों की कामयाबी के लिए लोगों का इनमें हिस्सा लेना लाजमी है। उन्होंने ग्राम पंचायतों से कानून साज अरकान तक तालमेल के साथ उठाए गए इकदाम पर जोर दिया ताकि गांवों और किसानों की खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके। नशीली अशिया पर काबू पाने वाले ब्यूरो NCB ने मुल्कों के माबैन नशीली अशिया की नाजायज तिजारत के उन नेटवर्क्स के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है जो भारत म्यांमार सरहद पर अपनी कार्रवाइयां अंजाम देते हैं। ब्यूरो ने म्यांमार में मुकीम सरगना थांगकिंग तुआंग को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। NCB ने एक बयान में कहा है कि यह गिरफ्तारी वसी तौर पर निगरानी खुफिया मालूमात में इजाफे तालमेल के साथ किए जाने वाले बैन रियासती तालमेल और लगातार पीछा करने की कार्रवाइयों की बदौलत की गई है। थांगकिंग तुआंग कई तरह की मंशियात और नशीले मादों के कानून के तहत मतलूब था। ये केस NCB और मंशियात से मुतअल्लिक कानून नाफिज करने वाली कई एजेंसियों ने दर्ज की थी जिसमें से NCB ने 2 केस दर्ज किए थे। नई और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने एक ही दिन में 256.4 GW की बिजली की मांग को पूरा करने में, जो अब तक की सबसे बड़ी मांग है, कामयाबी हासिल की है। एक प्राइवेट अंग्रेजी रोजनामे के साथ बातचीत में जनाब जोशी ने कहा कि बिजली की 33% मांग काबिल तजदीद तवानाई के वसायल से पूरी की गई है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि इस बड़ी तब्दीली से तवानाई की सलाहियत में बड़ी तेजी से इजाफे, ग्रिड को मुस्तहकम बनाने और मुल्क की तरक्की के सफर को तकवीत देने में माहौल के लिए साजगार तवानाई के बढ़ते हुए हिस्से का अंदाजा होता है। रूस में मास्को और आसपास के इलाकों पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में 4 अफराद की मौत हो गई है, जिनमें एक भारतीय मजदूर भी शामिल है। मास्को के मेयर सरगेई सुबियानिन ने बताया कि रात भर हुए इन ड्रोन हमलों में कम से कम 12 अफराद जख्मी भी हुए हैं। रूस के हुक्काम के मुताबिक मास्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को तबाह भी किया गया है। यूक्रेन के सदर विलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों की तस्दीक करते हुए इन्हें दुरुस्त कार्रवाई करार दिया। इस दौरान रूस में भारतीय सफारतखाने ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में बताया कि मास्को को मुख्तलिफ इलाकों में हुए ड्रोन हमलों में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। सफारतखाने ने मजीद बताया कि सफारतखाने के अहदेदारों ने हादसे की जगह का दौरा किया और अस्पताल में जेर इलाज जख्मी मजदूरों की कैफियत दरियाफ्त की। भारत के महकमे मौसमियात का कहना है कि जनूब मगरबी मानसून इस माह की 26 तारीख को केरलम में दस्तक दे सकता है। महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि मॉडल एरर की बुनियाद पर इसमें 4 रोज आगे या पीछे होने की भी गुंजाइश है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि जनूब मगरबी मानसून के जनूब मशरकी बहिरे अरब के कुछ मजीद हिस्सों जनूब मगरबी और जनूब मशरकी खलीज बंगाल अंडमान जजायर और बहिरे अंडमान के बाकी हिस्सों और मशरकी वस्ती खलीज बंगाल के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 रोज के दौरान हालात मुआफिक रहेंगे। महकमे मौसमियात ने कल मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी की पेशगोई की है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह की सूरतहाल का इम्कान जाहिर किया गया है। बैडमिंटन में आज चीन में बाओजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में भारत की श्रियांशी वाली शेट्टी ने चांदी का तमगा जीता है। उन्होंने बाओजी सिटी जिम्नेशियम में सुपर 100 के फाइनल में चीन की एन क्वी युआन को सीधे सेटों में 14-21, 6-21 से शिकस्त खाई, लिहाजा उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के जरिए दिए गए 223 रन के निशाने को हासिल करते हुए पंजाब किंग्स मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 199 रन ही बना सकी। इससे कबल बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 222 रन बनाए थे। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दिन के एक और मैच में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने जीत के लिए 194 रन का निशाना रखा है। इससे कबल दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हममनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से वफ्त की सतह की बातचीत कर रहे हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने दो रोजा दौरे में इस मुल्क के अपने हम मनसब के साथ दो तरफा बातचीत की। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दिगर बुनियादी शोबों में तआवुन को मुस्तहकम बनाने से मुतल्लिक 17 माहदों पर दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दो तरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिली है। कांग्रेस रहनुमा वीडी सतेसन को कल केरलम के नए वजीर आला का हलफ दिलाया जाएगा। मास्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर समेत 4 अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने शुमाली भारत में कल शदीद गर्मी की पेशगोई की है। और बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वाली शेट्टी ने बाओजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में चांदी का तमगा जीता। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। इससे कबल बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 222 रन बनाए थे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ngaje akashwani lelijut tsani chutut guna phechadu kasta tsiring dolkartan thopani salkani lurik sanajat

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: का सतत सरिंग डोल करता हूँ ठोपाने साल कने ई लुबान सनजात

दासंगी जराय चिरिंगडोल करता ठोपाने सरकनी लुरिक सनाजाज ngaji आकाशवाणी लेनी जुत सानी चुचोत उस चुचा दुग इन्ना बोता गे पो ngaji दिरिंग डिग्रीम ये स्पाथुन डिग्रीम तापे पे थोरे गा तो चुचोल दुन्नास कर्मांगी चुरसाई कयां चलिन तेते चुपा गोंस पासल जत जुले जय हिंद।